0: सब लोग नेशनल हॉस्पिटल में मेरो विलम लो इलोगा तो मोगा इबे कम से वर्कलोड पाई रिलीफ आफ्टर मनी सब रिलीफ लॉन्ग टाइम मनी नो स्ट्रेस आउट सेकेंडली टू बाहे मी लोकेट लो नॉर्दर्न प्रोविंशियल हॉस्पिटल सो दैट वन दैम को माला कुला इको लो अंपाई इको लो पोट वाइस लो बैंक्स इगत मन एमिसा मन क्लिनिक इबे कम से वर्कलोड हेमी एमी एमी नो स्ट्रेस लो लाइफ लो वन डॉक्टर
1: One consultant lo United Nations Office lo Drugs More Crime UNODC emi wone mo liang vla lo Vanuatu mo narla Pacific Island Country plo limas lookout kut ta mo li usum cryptocurrency mo narla digital asset we stap kamanda pikuan lo region Dr. Jeffrey Karai we mi plo Vanuatu emi talem tuk tuk ya lo Pacific Youth Digital Resilience Forum Dr. Karai talem se nomata ol digital asset oli sabe meke money move quick mi mo give him mo chanis lo man plo usum service plo money oli sabe open em rotu plo ol scam fraud money laundering mol people oli sabe lusum money plo ol keda emi aske mol yang vla plo li look out kutol private information lo ol keda chekem kutol information before li trust them mo sabe lo ni vla lo will stop come up lo site plo digital asset mo update lo site lo Sport World Cup update. The second semi-final we stop quiet now ya between England versus Argentina. Score me 0-0 half time now ya. We now blow second semi-final ya by me face him Spain lo grand final after we Spain win in France yesterday grand final blow FIFA World Cup 2026 by me call action lo Monday next week. Modem sport now we put them end lo FBDC news update.
2: VBTC, leader dans le domaine de l'actualité en qui vous pouvez avoir confiance. Nous ne nous contentons pas de vous rapporter que des faits divers, nous vous donnons des vraies informations. En tant que seule institution publique de radiodiffusion, nous sommes la source d'informations équilibrées, authentiques et qui vous parviennent à l'heure. Notre nouvelle émission Straight Talk, diffusée tous les mercredis de 12h30 jusqu'à 1h30, vous donne des réponses émanant des entrevues approfondies sur divers sujets importants. Vous pouvez accéder à notre nouvelle plateforme numérique pour suivre les actualités et accéder à notre contenu éditorial en ligne. En matière d'actualité, le Vanuatu vient à nous.
3: Listeners, Blue Radio Vanuatu, 7 o'clock today in the morning, and you've been joining company Blong SN Chuck straight one time the news desk. What am I at 7 o'clock news update? Mabayin to follow now, mi pishlama tok program Blong Terei.